हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। दोस्तों, आज के समय में व्यस्त जीवन शैली, बढ़ती महंगाई और इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के कारण सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस लोगों की आदत बन चुकी है। बिना किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लिए लोग फार्मासिस्ट को समस्या के लक्षण बताकर दवाई ले लेते हैं। हालांकि ये आदत गंभीर बीमारी को जन्म दे सकती है। आज हम इस लम्हे प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवाइयों का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। ड्राई कॉफ, टाइटनेस इन द चेस्ट, गले में दर्द और खराश के साथ कफ निकलने पर कफ सिरप लिया जाता है, लेकिन कफ सिरप के कारण सुस्ती, नौजिया, घबराहट, याददाश्त में कमी जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर के सलाह लिए कफ सिरप न लें। मामूली खांसी से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए लैक्सेटिव मेडिसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। साधारण तौर पर किसी भी डिलीवरी या सर्जरी के पहले पेट साफ करने के लिए ऐसी दवाई दी जाती है, लेकिन इन दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने से पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, लैक्सेटिव कोलाइटिस, लूज मोशन, किडनी में स्टोन और हार्ट की मसल्स में कमजोरी हो सकती है। आमतौर पर बुखार और किसी भी तरह के एलर्जी से होने वाली जुकाम की स्थिति में ऐसी दवाइयां दी जाती है जो बैक्टीरिया, फंगस और ऐसे ही अन्य परजीवियों को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन इन दवाइयों के सेवन से त्वचा में एलर्जी, डायरिया जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से बिना सलाह लिए इन दवाइयों का सेवन करने से बचना चाहिए। जोड़ों का दर्द होने पर या किसी दुर्घटना में चोट लगने पर लोग दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे में जी मचलना, गैस की समस्या, पेट दर्द और लूज मोशन आदि। इसके अलावा ऐसी दवाइयां लेकर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाह लिए पेन किलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस आप घर पर बैठकर मत कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर की पर्ची के बिना सेल्फ मेडिकेशन काफी है तो आप गलत हो सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के कई नुकसान हैं जिसका असर लंबे समय में जाहिर हो सकता है। बुनियादी तौर पर जब दवाइयां आपके शरीर में प्रवेश करती है तो तेजी से अवशोषित हो जाती है और प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। हो सकता है कभी आपको राहत मिल जाए या बाद में साइड इफेक्ट जाहिर हो। खरीदी गई हुई दवाएं बहुत नशीले और खतरनाक हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेगुलर मिलने वाला कॉफ सिरप खासकर इलाज में बहुत मशहूर है। ऐसे कॉफ सिरप्स इस्तेमाल करने पर मरीज नींद से भरा हुआ महसूस करने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग राहत के लिए ऐसे कॉफ सिरप ले लेते हैं। हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं जहां कॉफ सिरप लेकर लोग नींद में चले जाते हैं और ये खासकर ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वर्तमान में ये सिरप डॉक्टर की सलाह पर बेचा जा रहा है। इसके विपरीत कई एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की पर्ची के साथ बेची जाती है। एंटीबायोटिक्स की खरीदारी डॉक्टर के सुझाव पर करनी चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसकी बिक्री को अपराध समझना चाहिए। कभी कभी लोग डॉक्टर के मशवरा के बिना पेन किलर को खरीद लेते हैं। शरीर में पहुंचने पर पेन किलर भविष्य में दर्द का कारण बन सकता है। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयों की खरीदना छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से सेल्फ मेडिकेशन के खतरे से लोगों को अवगत कराया जा सकता है। सबसे ज्यादा अहम है दुकानदार को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा की बिक्री रोकने के लिए शिक्षित किया जाए। पिछले सालों में लोगों के खानपान और हेल्थ केयर संबंधी आदतों में कई सारे बदलाव आए हैं। कोविड से बचाव में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों ने बिना डॉक्टर से बिना सलाह मशवरा

किए इंटरनेट पर पढ़कर कई तरह के दवाइयों और मल्टीविटामिन का खुद से ही सेवन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें किडनी और लिवर से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही गलत आदत है जो इन दो अंगों को ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो जान ले कौन सी दवाइयों को ज्यादा सेवन से किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि लोग बीमारी के साथ साथ खुद से दवा लेना साइड इफेक्ट भी झेल रहे होते हैं। इन्हें बाद में गलती का एहसास होता है, पर तब तक बॉडी पर इसका असर पड़ चुका होता है। खुद से दवा लेने के खास पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। शर्म या लिहाज के चलते महिलाएं खुद से ही दवा ले लेती है या परिवार को प्राथमिकता देने के चक्कर में वो अपनी तबीयत पर ध्यान नहीं देती और खुद से इलाज शुरू कर देती है। ऐसी गलती न करें। कुछ लोग खुद से सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर आपको बता दें कि इससे भी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। सप्लीमेंट्स का असर हर शरीर पर अलग ढंग से होता है। अगर सही तरीके की बात की जाए, सप्लीमेंट्स लेने से पहले भी आपको कई टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कई लोग प्रोटीन, विटामिन आदि सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन आपको बीमार कर सकता है। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है बिना डॉक्टर की सलाह लिए खुद से दवा ले लेना। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं उन्हें इसके नेगेटिव परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के असर से उल्टी, चक्कर आना, सिर में दर्द से लेकर मोटापा, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए आप अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। उम्र और बीमारी के मुताबिक तय होता है दवा की डोज। डोज ऑफ मेडिसिन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू एज एंड डिजीज। आपने दवाओं पर नाम के साथ उसकी एमजी भी लिखी देखी होगी, जैसे 75 एमजी या 500 एमजी। ये दवा की डोज होती है। उम्र और बीमारी के मुताबिक डोज डॉक्टर तय करता है। अगर आपने छोटे बच्चे को हाई डोज दे दी तो उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। वही अगर हल्के बुखार में आपने हाई डोज ले ली तो आपको घबराहट या बेचैनी होगी। इसीलिए भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना खतरनाक है। वायरल होने पर या मलेरिया जैसे रोगों में भी लोग खुद से दवा ले लेते हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन उनके पास नहीं होता है। कई बार तो इन रोगों से बचने के लिए लोग पहले से ही दवा खाना शुरू कर देते हैं, पर इन दवाओं को खाने से आपको रोग नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स खाने के नुकसान बहुत है दोस्तों। साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। टीवी पर एड देखकर या इंटरनेट पर पढ़कर लोग सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोचते हैं, पर आपको नेचुरल फूड से ही पोषक तत्वों की कमी पूरी करनी चाहिए। खुद से सप्लीमेंट्स लेना हानिकारक हो सकता है। उम्र बढ़ने पर पोषक तत्वों की कमी होती है जिसे पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की मदद ली जाती है, पर उसे डॉक्टर बताते हैं अगर आप खुद से ही इन्हें खाएंगे तो इनका बुरा असर आपकी हेल्थ और स्किन पर हो सकता है। कई बार हार्मोन का स्तर घटा या बढ़ जाता है जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। खुद से दवा लेने पर लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सी दवाइयां लीवर को इफेक्ट करती है, इसीलिए डॉक्टर दवा के साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, पर खुद से दवा लेने पर आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर आप दर्द के लिए पेन किलर खा रहे हैं तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपके बाल झड़ सकते हैं, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, सुस्ती आना, मुंह सूखना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन, मसल टाइटनेस एंड सोरनेस, ये सब पेन किलर से होते हैं। बुखार, खांसी या वायरल की दवा अगर आप खुद से लेते हो तो आपके पेट में गड़बड़, एसिडिटी, किडनी से जुड़े शिकायत आदि हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक केमिस्ट की बताई हुई दवा भी न ले। कई बीमारियों में जांच की जरूरत होती है। दवा के साइड इफेक्ट तुरंत न दिखे पर आपको बाद में खुद से दवा लेने के दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है, इसीलिए डॉक्टर की मदद ले। With this very useful information about the harmful effects of self-diagnosing and self-medication, this is Chetan wrapping up for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515 double 2703.

0: कड़क आवाज, वो समझा रहे हैं।
1: कुछ कहने से पहले तनिक सोच तो लिया करो वत्स, कुछ सोच तो लिया करो। अरे धृतराष्ट्र, समझाओ अपने इस पुत्र दुर्योधन भी नहीं है। अरे इस तरह से तुम कहते रहे वत्स, तो बताओ क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के वाणों को झेल सकेंगी वत्स?
0: क्या बात है।
1: तो इस तरह से
0: वो जमाना याद आ गया जब
1: बचपना
0: कर्फ्यू लग जाता था।
1: जी जी,
0: रविवार को लोग महाभारत दिखा करते थे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये स्कूल में आप करने लगे?
1: ये मैं स्कूल में करने लगा था।
0: फिर आगे
1: मैं धीरे से बढ़ा तो अपने शहर से दूसरे शहर से राजधानी भोपाल, फिर आसपास के और बड़े
0: लोग बुलाने लगे
1: ऑर्केस्ट्रा में, नवरात्रि में, फिर ये सोशल वाले जो क्लब्स होते हैं, जो इस तरह के सोशल वाले प्रोग्राम कराते हैं।
0: हाँ।
1: उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया।
0: मतलब आप शुरू से ही बिजी हो गए?
1: जी बिल्कुल। मैं 10वीं क्लास में आते आते प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया था।
0: घर से डांट पड़ती थी?
1: हाँ, घर से डांट पड़ती थी,
0: पढ़ लिख लो।
1: लेकिन वो डांट इसलिए नहीं पड़ती थी ज्यादा कि मैं स्कूल अटेंड करता था बराबर।
0: अच्छा।
1: और शाम को 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल की, मैं घर आया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, सब अपने रंगीन कपड़े पहने प्रोग्राम वाले, और किसी ट्रेन में बैठकर आसपास के किसी शहर में पहुंच जाता था, प्रोग्राम करता था, और रात की किसी ट्रेन से वापस आ जाता था।
0: अरे,
1: और सुबह बराबर स्कूल अटेंड करता था।
0: इतना डिसिप्लिन, इतनी मेहनत।
1: तो हमारे टीचर मन में सोचते थे क्या है, बोले ये लड़का कल भी स्कूल आया था, आज भी आया है, और आज इसका अखबार में फोटो छपाई, कल ये वहां प्रोग्राम कर रहा था,
0: ये कैसे हो गया,
1: ये कैसे संभव होता है। तो बड़े खुश होते थे इसको देखकर कि चलो कोई एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी फोटो आती है अखबारों में। तो प्रसन्न होते थे बहुत वो।
0: वाह वाह।
1: और मैं पढ़ने में तेज तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, लेकिन ठीक था मैं।
0: हाँ, बढ़िया है। तो कॉमेडी का जो दौर नहीं था, मतलब मिमिक्री करनी होती थी और अलग अलग शहरों में जाके आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से आगे के रास्ते किस तरह से खुले?
1: देखिए, मैं अपने मध्य प्रदेश में सब जगह प्रोग्राम कर रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक करते करते अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके मैं कॉलेज में भी आ गया था, और कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवा उत्सव,
0: बिल्कुल,
1: उसमें हम प्ले में भाग लेते थे। कभी कहीं भाषण हो रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सब चलता था। उसमें मैं जीत कर एक शहर से दूसरे शहर, फिर कॉलेज के प्रोग्राम होते थे,
0: राज्य स्तरीय,
1: हाँ, तो उन सब में मैं जाता था। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मैं सोच रहा था आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, तभी मेरे घर एक फोन आया।
0: अच्छा।
1: उस समय टेलीफोन होता था, मोबाइल आया नहीं था, आया होगा तो बड़े शहरों में आया था, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था। एक फोन आया, हम स्टार टीवी से बात कर रहे हैं,
0: अरे बाप,
1: एक कार्यक्रम बन रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसमें उदय दहिया साहब को हम बुलाना चाहते हैं।
0: उन तक आपका नाम पहुंच गया था?
1: हाँ, वो टीम जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने पता किया, जो मैंने आपको बताया सोशल जो प्रोग्राम कराते हैं, इस तरह की समितियां कमेटियां होती हैं, तो उन्होंने बताया एक उदय दाहिया है,
0: वो अच्छा करते
1: हैं, वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया घर पे, मैं इत्तेफाक से घर में नहीं था, मेरी माँ ने, अम्मा जिनको बोलते हैं, उनने फोन उठाया, बोले बेटा वो तो भोपाल गए हैं शो करने, तो कल आएंगे। बोले ठीक है, कल हम बात करेंगे। अगले दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है, आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस प्रोग्राम में आके मैं करूंगा क्या? आप तो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कॉमेडी में कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं। तो बोले आप कितने पैसे लेते हैं एक प्रोग्राम के? मैंने कहा मैं 5,000 रूपये बोलता हूँ, मुझे 3-4 हज़ार रूपये मिल जाते हैं।
0: तो मेरा इतने ऑनेस्टली बता दिया।
1: हाँ, तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम आपको एक प्रोग्राम का पैसा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप आइए। तो मैं फिर जबलपुर गया, ऑडिशन हुआ, और तुरंत उनने कहा कि आप मुंबई आ रहे हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था,
0: क्योंकि उस वक्त लाफ्टर चैलेंज इतनी बड़ी चीज थी
1: जी,
0: कि उसमें जितने लोग शामिल हुए
1: जी,
0: सब जो हैं वो अलग अलग तरह से आज भी सक्रिय हैं
1: जी, बिल्कुल,
0: और बहुत ज्यादा नाम उन लोगों ने कमाया।
1: सच्ची बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उससे,
0: बिल्कुल। हाँ। तो जो लाफ्टर चैलेंज का जो पहला सीजन था
1: जी,
0: उसमें आप शामिल थे
1: साहब। ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मेरा नाम है उदय
0: जी,
1: जिसका मतलब ही होता है आराम होना,
0: और आरंभ से आप थे,
1: और मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था।
0: मतलब आप ही से शुरू हो रहा है?
1: मुझसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था।
0: अरे गजब। और कौन कौन लोग थे उस सीजन
1: में? राजू
0: थे,
1: राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरैशी थे।
0: हाँ।
1: और जो अभी सीएम साहब हैं पंजाब के, भगवंत मान साहब थे।
0: गजब गजब।
1: तो ये सारी
0: मजेदार कॉमेडी करते थे वो,
1: बहुत मजेदार कॉमेडी होती थी।
0: गजब, उसको तो लोग बहुत देखा करते थे।

0: लोग इंतजार करते थे, कोई एपिसोड चूकता नहीं था।
1: सच्ची बात।
0: लेकिन मुकाबला कितना सख्त था, एक से बढ़के एक दिग्गज, सबकी अपनी अपनी शैली।
1: हाँ,
0: सुनील पाल की अपनी शैली, एहसान भाई की वो जो खींच कर बोलने की शैली
1: जी,
0: है ना, जो वो कहाँ के एहसान भाई,
1: वो मध्य प्रदेश के हैं,
0: सिवनी के हैं। हाँ, तो वो अपनी शैली लेके आए।
1: जी हाँ,
0: आपकी अपनी शैली।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अपनी पहचान बनाने के लिए और इन दिग्गज लोगों से मुकाबला करने के लिए कितना जिगरा चाहिए था?
1: नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और हम कुछ मुकाबले के लिए या उसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये था कि हमें जो आता है वो हमको करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब जो सुनने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सब अपना अपना फन लेकर आए थे। और ना तो हम किसी सामने वाले को देखकर अपना कोई अस्त्र शस्त्र बदल सकते थे
0: जी,
1: क्योंकि था ही उतना।
0: बिल्कुल।
1: कोई एक्स्ट्रा कुछ था नहीं कि यार इन्होंने ये सुनाया तो अब मैं ये सुना दूंगा। हमारे पास अपना था, हमको ये सुनाना है।
0: क्या बात है।
1: अब ये अच्छी बात है कि जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जज हैं, उनको पसंद आ गया।
0: लेकिन एक मजेदार बात मुझे समझ आ रही है कि ये लाफ्टर चैलेंज सीजन 1 एपिसोड 1 आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना दबाव था और क्या परफॉर्म किया था आपने
1: वहां पर? ऐसा था कि कुछ फिक्स तो था नहीं। उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सुनाते हैं सुनाइए। तो हमने अपना सुनाया, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने उसमें किया कि ये रख लीजिए आप।
0: वाह।
1: और ये आपको एक एपिसोड में चार अलग अलग दौर होंगे, पहला। हाँ। दूसरा, तीसरा। तो पहले दौर में ये सुनाइए, दूसरे दौर में ये सुनाइए और फाइनल में ये सुनाइए।
0: करेक्ट है।
1: तो पहले दौर में उन्होंने जो था हमारा ही माल पूरा, बस उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये सुनाइए। और वो हमने सुनाया और वो पसंद आया लोगों को।
0: क्या था वो?
1: वो उस समय वो बात हो गई 20 वर्ष पुरानी, 2005 में आया था ये। तो पहले एपिसोड में मैंने जो सुनाया था वो कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी के ऊपर था वो। कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दुबले पतले मोटे अलग अलग तरह के लोग। तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनको फायदे होते हैं। तो एक बहुत मोटा आदमी जूते की दुकान में गया और जूते वाला उसके सामने जूते रखते जा रहा, उसको क्या पेट इतना बड़ा था कि नीचे पैर दिखते नहीं थे उसको। तो वो ऐसे पैर करता था और बोलता था ये बन नहीं रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं बन रहे। दुकान वाला परेशान, पसीना पोछड़ा, जूते का ढेर लगा हुआ है, बोल रहा कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। अचानक वो बोला यार ये एकदम सही है, ये एकदम फिक्स आ रहा, ये कितने का है? दुकान वाला बोला ध्यान से नीचे देख, वो जूता नहीं है, जूता रखने का डब्बा है जिसमें पैर फंस गया।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो इस तरह का मैंने कुछ सुनाया था कि मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था।
0: हाँ।
1: ट्रेन से आ रहा था, मेरी स्टेशन आने के चार स्टेशन पहले एक बहुत मोटी सी बहन जी मेरे पास आ गई और बोली भाई साहब मुझे अगले स्टेशन पे उतार दोगे? तो मैंने कहा क्यों बहन जी, आपसे क्या उतरते नहीं बनता? बोले ये बात नहीं है भाई साहब, दरअसल मैं बहुत मोटी हूं तो मुझे सामने नीचे का दिखता ही नहीं है। तो मैं सीधे उतर नहीं पाती हूं, तो मैं ऐसे घूम के उतरती हूं तो लोग समझते मैं चढ़ रही हूं, धक्का देके ऊपर कर देते हैं। मैं चार स्टेशन से ट्राई कर रही हूं उतरने का, अभी तक नहीं उतर पाई।
0: कहां से सोचते हैं आप?
1: तो इस तरह का कुछ मैंने सुनाया था वहां पर।
0: अच्छा। लेकिन लगातार जब मामला आगे बढ़ता चला गया तो जाहिर है कि मुकाबला भी सख्त हुआ और जो अपने कमान के तीर हैं वो तो खर्च होते जा रहे थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो फिर कैसे सस्टेन किया?
1: देखिए एक फसल कटती है तो दूसरी
0: तो आ जाती है।
1: तो वही चल रहा था कि जो पुराना था वो भेज दिया, अब कुछ नया बनाइए।
0: हाँ।
1: और जो नया बनाते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, वही मार्केट में चल पाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक निश्चित मात्रा में कोई लेकर अगर चल रहा है तो वो तो एक दिन खर्च हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या करेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
0: देखिए इतने साल हो गए, कितना आपने गिना? 20 साल,
1: 20 वर्ष हो गए।
0: 20 वर्ष में तो कितनी फसल उगा देनी पड़ी होगी?
1: बहुत सारी। अब आपने याद दिलाया तो मैं याद कर रहा हूँ 20 साल पहले क्या सुनाया था। ये हम स्टेज पर सुनाते ही नहीं है आजकल, कुछ और ही सुनाते, कुछ और चलते रहते,
0: क्योंकि सब बदल गया है,
1: सब जमाना बदल रहा है पूरा।
0: उस वक्त जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि मुकाबला भी तो हो रहा था?
1: जी बिल्कुल। कलाकारों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था, सब आपस में एंजॉय करते थे।
0: तो बैक स्टेज क्या चलता रहता था? इतने सारे कॉमेडियन एक साथ अलग अलग इलाकों के जुड़ रहे हैं,
1: बहुत मजे करते थे। मतलब जो वहां नहीं होता था,
0: हाँ,
1: उसकी बातें चलती थी।
0: अच्छा।
1: और उसको लेकर कॉमेडी की जाती थी, और चूंकि मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो साथ वालों की, कलाकारों की मिमिक्री की जाती थी।
0: हाँ।
1: तो बहुत मजेदार होता था।
0: एक दूसरे की भी करते थे?
1: एक दूसरे की जैसे करते थे। वो बुरा मानेंगे अगर सुनेंगे तो, हमारे
0: मानेंगे।
1: आप नायकर साहब को सुनते हैं?
0: अरे नायकर साहब हमारे शहर के हैं।
1: तो वो जब बात करते थे बोलते थे अरे दहिया

0: ये देखो भैया, हमारा तो ऐसा है कि हम जो हैं तो कभी ये भीड़ भाड़ के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। हम अपना जबलपुर में रहते हैं, वहीं से प्रोग्राम करते हैं, बम्बई आते हैं, अपना प्रोग्राम किए और भैया चले गए जबलपुर। ये भीड़ भाड़ का चक्कर अपने को नहीं जमता।
1: बिल्कुल यही स्टाइल है उनकी, और वो जो चेहरे के निष्प्रिय भाव
2: जी जी तो ऐसे हम लोग एक दूसरे का भी करते थे।
1: अरे वाह, क्या बात है। एक कॉमेडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैनी नजर रखना और दुनिया की धड़कनों को पहचानते रहना। इन दिनों आप कौन कौन से आइटम्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए पेश कीजिए।
2: जरूर, इस समय मैंने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है जो खास तौर से बहुत पसंद भी किया जा रहा है। मैं स्कूल में जो बच्चे हैं और जो परीक्षा को लेकर उनके मन में एक डर होता है और कम परसेंट ना जाएं, बहुत दबाव होता है बच्चों
1: बहुत ज्यादा
2: और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उनको लेकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। वो मुझे उसमें स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्कूलों में बुलाते हैं और मैं अपनी बातों से बच्चों को हंसाते हुए, हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए उनको उस फियर से बाहर करता हूं।
1: अरे गजब।
2: और उनको ये समझाता हूं कि जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है आपकी जिंदगी।
1: वाह वाह वाह,
2: आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
1: कितनी प्यारी बात है।
2: तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूं और इसको लेकर मैं बच्चों के बीच में कॉमेडी भी करता हूं, उनके स्कूल की बातें करता हूं, फिर अपने स्कूल की बातें उनको बताता हूं, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर क्या करते थे, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और ये सब बताते हुए मैं उनको बताता हूं, तो वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट होते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मेरी बातें सुनकर बच्चे थोड़ा भी सीख जाएं या एक दो बच्चे भी सुधर जाएं, वो ना करें जो वो कर लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मिशन में सफल हो गया हूं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। लाफ्टर चैलेंज में शामिल होने के बाद जाहिर है कि अपना शहर छूट गया
2: जी,
1: है ना, और आप मुंबई के हो गए
2: जी।
1: जिंदगी कितनी बदल गई?
2: जिंदगी बदली तो है, लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जो बदलता है वही सर्वाइव करता है, आगे जाता है। थमा हुआ पानी तो एक दिन दुर्गंध मारने लगता है, जो बहता है वो साफ निर्मल होता जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां रही होंगी, वो पीछे छूटती जा रही हैं और अच्छा साफ होके उजले होते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: क्या बात है। एक के बाद एक लगातार आपने बहुत सारे टेलीविजन पर काम किए और उसके जरिए आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा एंजॉय किस प्रोग्राम में किया आपने?
2: देखिए, काम तो बहुत सारा किया, लेकिन जो शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरू होता है वो आनंद एक अलग ही होता है। वो जो लाफ्टर चैलेंज किया था हम लोग, उसके बाद तो फिर क्या, वो पहली बार था, पहली बार हवाई जहाज में बैठना, पहली बार फाइव स्टार होटल में बैठना, पहली बार कैमरे के सामने किसी बड़े मंच पर सामने सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वो जो अनुभव था वो अद्भुत था। उसके बाद तो फिर वो एक आदत में आ गया कि भाई अब कोई और दूसरा सेलिब्रिटी आएगा, अब कोई दूसरा मंच होगा। हाँ। लेकिन जो पहला मंच था उसका अपना एक अलग मजा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं आपके करियर को लेके? और क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी एक चिंता आपके करियर को लेकर रही
2: जी। पहले तो ऐसा था कि पहले उनको स्टार्टिंग में डर लगता था कि ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे खानदान में आसपास दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं,
1: परफॉर्मर नहीं था,
2: और अगर वहां छोटी जगह में जो कलाकार होते भी हैं तो पार्ट टाइम में कलाकारी करते हैं, बाकी या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई दुकानदारी कर रहे होते। क्योंकि कलाकारी करके कोई अपना घर चला लेगा, जीवन चला लेगा, ये वहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो यही कहते थे कि बेटा ये क्या चल रहा है तुम्हारा। तो हम बोलते थे कि अभी स्कूल चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे चलकर नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये शौक है हमारा। लेकिन जब उससे पैसे मिलने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगी और पैसे आने लगे, तो उनको लगा कुछ तो अच्छा कर रहा है।
1: जब टेलीविजन पर आपको देखा मम्मी पापा ने
2: जी,
1: तो वो कैसा मोमेंट था?
2: वो तो अद्भुत था। वो बड़ी मजेदार घटना है। मेरे पिताजी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पर थे वो
1: जी जी।
2: तो बड़े अधिकारी ऊपर होते हैं साहब, बड़े बड़े, और काम बताते हैं, मिस्टर दाहिया यहाँ, मिस्टर दाहिया वहां जाओ, मिस्टर दाहिया। बाबूजी बोले, एक दिन मेरे कान में आवाज आई, दाहिया साहब। तो बोले, यार साहब मुझे दाहिया साहब क्यों बोल रहे हैं? बोले, जी सर, दाहिया साहब ये उदय दाहिया कौन है? तो बोले, साहब मेरा लड़का है दूसरे नंबर का। अरे बोले, उनको

0: भी आते यहाँ? बोले हाँ आते हैं। बोले आए तो एक बार घर भेज देना, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं।
1: अरे गजब गजब।
0: तो वो मोमेंट इतना अच्छा था कि पिताजी ने बताया, बोले बेटा तुम्हारे कारण आज मेरे साहब ने मुझे साहब कहा।
1: कितनी प्यारी बात है, मतलब उन्हें कितना अच्छा लगा होगा।
0: बहुत अच्छा लगा
1: कि बेटे ने कोई तो उपलब्धि हासिल की है।
0: जी जी।
1: अब तो ये ट्रैवल करना, परफॉर्म करना एक रूटीन बन गया है। लेकिन अपने काम में नवीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप?
0: मैं देखो आपको बताऊं, मैं एक तो पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं।
1: हाँ हाँ।
0: और मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूं,
1: हाँ,
0: तो मैं व्यंग बहुत पढ़ता हूं। मैंने परसाई जी को खूब पढ़ा हुआ है।
1: क्या बात है।
0: उनका पूरा जितना भी साहित्य है 6 खंड में वो मेरे पास है।
1: हाँ।
0: शरद जोशी जी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यंगकार हैं उनकी किताबें मेरे पास हैं, उनको सबको मैं पढ़ता हूं। और एक बड़ी अच्छी चीज ईश्वर ने मुझे दी है कि मैं जो पढ़ता हूं या जो देखता हूं वो मुझे याद हो जाता है और बरसों बरस तक याद रहता है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो मैं जो भी पढ़ता हूं वो याद रहता है और कभी कभी मौका आने पर मैं उनको मंच पे सुना भी देता हूं,
1: बहुत
0: जैसा मौका आ जाए।
1: क्या बात है।
0: तो वो बाद में नाम भी बोलता हूं उनका कि इनकी रचना है ये।
1: हाँ हाँ।
0: क्योंकि वो उनका अधिकार है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ,
1: जरूर,
0: ये परसाई जी की। मैं उनकी रचनाएं घंटों सुना सकता हूँ, इतनी याद है मुझे।
1: वाह वाह।
0: एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
1: जरूर।
0: लोग कुत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं और आजकल बड़ा मीडिया में छाया भी है। हमारे यहाँ से कोर्ट से भी निर्देश होते हैं, डॉग के ऊपर बड़े केसेस होते रहते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते, अलग अलग तरह के कुत्ते पालते हैं। क्या शौकीन लोग होते हैं। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहां से निकला, दूसरा आदमी कॉलोनी के उस तरफ से निकला। ये दोनों आमने सामने से निकल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, अचानक इस आदमी के कुत्ते ने उस आदमी के कुत्ते को भौंक दिया।
1: याद आ गई मुझे ये रचना।
0: तो वो साहब बोले, बताओ कैसा कुत्ता है? मैनर्स लेस कुत्ता है। मैनर्स ही नहीं है, बताओ भौंक रहा है, भौंका जाता है क्या? तो ये साहब बोले, मैनर्स लेस किसको बोला है? मेरा कुत्ता बहुत अच्छी नस्ल का है, एक नंबर का कुत्ता है। और ये जो तुम बोल रहे हो ना नस्ली कुत्ता, तुम्हारा होगा ऐसा रोड छाप। हमारा नस्ली कुत्ता? बोले रोड छाप हमारा नहीं है, रोड छाप आपका कुत्ता है। अगर हमारा कुत्ता रोड छाप होता तो भौंकता। आपका कुत्ता भौंका है, आपका कुत्ता रोड छाप है। बोले मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छे से, आपका कुत्ता भी रोड छाप है और आप भी रोड छाप हो। पिछले साल ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हाँ। तो बोले आपको भी मैं जानता हूं, उसके एक साल पहले आप भी थाने गए थे। किसी ने पूछा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई हो रही
1: है। क्या बात है। परसाई जी की जो निगाह है वो बहुत तेज, और वो जो समाज पर जो चिकोटी काटते हैं वो बहुत तेज होती है।
0: जी,
1: बहुत तीखी होती है।
0: जी,
1: तो देखिए कितने सुंदर तरीके से आपने पेश किया। इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म कर दें आप हमारे लिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे।
0: जी जरूर जरूर। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूं
1: जी,
0: जिसको सुनाकर स्टार टीवी पे मेरा चयन हुआ था।
1: अच्छा।
0: इसको सुनने के बाद उस टीम ने कहा था कि एक ऐसी कॉमेडी है जिसे बोलकर सुनाना बहुत कठिन है। इसको पिक्चराइज तो किया जा सकता है, लेकिन कोई बोल के बताए और वो पिक्चर सामने बन जाए ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं।
1: ओके।
0: तो ये एक कहानी है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है तो इसलिए दिया है ताकि वो किसी काम को करे तो वो काम को अच्छे से कर ले, मुसीबत में ना फंसे और थोड़ा जल्दी कर ले दिमाग लगा के। लेकिन इंसान की आदत है कि उसके पास दिमाग है तो ज्यादा चलाता है उसको, और जब ज्यादा दिमाग चलाता है तो किस मुसीबत में फंसता है वो। तो एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया। डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ टूटे, कमर टूटी, पैर भी टूटे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता है तो वो एक दो जगह से टूटता है, तुम ये ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो उसने क्या बताया, बोले डॉक्टर साहब ये सब होशियारी के चक्कर में हुआ है। बोले कैसे? बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ कि 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, शाम के टाइम ठेकेदार आया और बोला ये जितनी ईंट रखी हैं ये पूरी ले जाकर नीचे रख के आओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर एक एक दो दो करके ये नीचे ले जाऊंगा ईंटों को तो मेरा तो सवेरा यही हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैं होशियार आदमी हूं, मैंने दिमाग लगाया, वहां एक ऐसी गर्री लगी थी ऊपर, उस पे मैं ऐसे सामान खींच खींच के ऊपर लाते थे हम, तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई और वो घिर्री में यूं फंसाया तो उसके दोनों छोर चले गए नीचे। अब डॉक्टर साहब मैं नीचे उतर के आया, मैंने उसके एक छोर पे खाली ड्रम बांध दिया, खाली ड्रम 15 किलो का और मेरा वजन 50 किलो का, और मैंने दूसरे छोर को खींच खींच के ड्रम पहुंचा दिया ऊपर।

0: अब दूसरे छोर को मैंने खंभे से बांध दिया, अब मैं ऊपर चढ़ के आया डॉक्टर साहब और मैंने सारी ईंट उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम हो गया 400 किलो का और मेरा वजन तो 50 मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं नीचे उतर के आया डॉक्टर साहब और मैंने मन में सोचा कि खंभे से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़ता जाऊंगा तो ड्रम नीचे आता जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये भूल गया कि ड्रम 400 किलो का और मैं 50 किलो का हूं। तो जैसे ही मैंने खंभे से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, सट से मेरे दोनों पैर जमीन से उठे, मैं सरसराता ऊपर जा रहा, ड्रम सरसराता नीचे आ रहा, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, अपन बहुत होशियार आदमी है। 5वीं मंजिल पे आ गए, यहां से अगर रस्सी छोड़ेंगे तो खोपड़ी फूट चुकी, नीचे गिरेंगे, हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो मैं रस्सी जोर से पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता ऊपर जाऊं, ड्रम सरसराता नीचे जाए, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों हाथ वो गर्री में चले गए, तो दोनों हाथ टूट गए।
1: लो भैया,
0: मैंने कहा खोपड़ी पहले ही फूट चुकी, हाथ इसमें टूट गए, अगर यहां से रस्सी छोड़ दी तो नीचे गिरूंगा तो साफ ही हो जाऊंगा। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ रहा डॉक्टर साहब। अब हुआ क्या कि जैसे ही ड्रम जमीन पर गिरा तो वो वजन के कारण फट गया, और जैसे ही फटा तो उसकी ईंट गिर के हो गई खाली, तो वो हो गया 15 किलो का और मैं 50 किलो। अब डॉक्टर साहब मैं ऊपर से सरसराता नीचे आऊंगा, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, हाँ। सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे। और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा, हाँ। तो खाली ड्रम आके मेरे पैर में लगा तो दोनों पैर टूट गए। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, नहीं तो अपने हाथ पैर सब टूट गए, यहां से नीचे गिरे तो साफ ही हो जाएंगे। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता नीचे जाऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए। और मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो वो ईंट के ढेर में गिरा। तो मेरी कमर टूट गई डॉक्टर साहब, और जैसे ही कमर टूटी तो मुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही चक्कर आया तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो का ड्रम 10वीं मंजिल से सरसराते आया और आकर मेरे ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी।
1: क्या बात है, ये तो विडंबनाओं का जो आपने दृश्य खींचा है वो बहुत ही कमाल है।
0: जी जी,
1: तो इस तरह से आप जो है कहानियां सुनाते हैं, अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, सबसे यादगार शो हमें बताएं।
0: शो तो यादगार बहुत सारे हुए हैं, कई जगह गए हैं, अलग अलग तरह के मंच मिलते हैं। कभी कोई आध्यात्म का मंच होता है, कभी कोई राजनीतिक मंच होता है, कभी कोई फिल्मी सितारों का मंच होता है। तो हम जहां जाते हैं लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि वहां से रिलेटेड कोई बात करें। तो एक बार मैं प्रोग्राम करने गया था ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, तो दादी ने मुझे बुलवाया और कहा, उस समय तक कुछ वैसे कॉमेडियन आ गए थे जो आजकल बहुत छाए हुए हैं, जो थोड़े से बिलो द बेल्ट बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ये आध्यात्म का मंच है और आप लोग कॉमेडी वाले हैं तो थोड़ा सा मंच की गरिमा बनाए रखिए। तो मैंने कहा जी दादी। अगले दिन जब मैं मंच पे आया तो मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने पहले एक छोटा सा प्रवचन सुनाया।
1: अरे गजब।
0: 1-1.5 मिनट की बात थी। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जो करता है करने देना, ये बहुत अच्छा करने वाला है।
1: वाह वाह वाह।
0: वो चूंकि शिव बाबा को मानते हैं, तो मैंने जाके शुरू ही ऐसे किया कि शिव बाबा ने ही सब कुछ बनाया है, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, सारे रस बाबा ने ही बनाए हैं। और जब जब शिव बाबा ने कोई रस बनाया तो उसके साथ एक कैरेक्टर बनाया। जब श्रृंगार रस बनाया तो रति और कामदेव को बनाया, जब वो हमारे हृदय में आघात करते हैं तो प्रेम जागता है। ऐसे अलग अलग रस बनते गए, एक एक कैरेक्टर आते गए। फिर उन्होंने हास्य रस बनाया, तो हास्य रस के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश की रचना की। उदाहरण के तौर पर हम जब आरती गाते हैं तो गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, पग खंबासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे।
1: वाह।
0: जब चंद्रदेव ने पहली बार गणपति जी को देखा तो उनका बड़ा सा पेट, खंबे जैसे बड़े बड़े कान, तो उनको उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, थोड़ा सा हंस दिए। लेकिन अगली लाइन में कहा है दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मुझे देख के कोई हंसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारी कलाओं से विमुक्त करता हूं। तब ये बात आई कि देवता हास्य के लिए नहीं होते, देवता पूजनीय होते हैं।
1: वाह वाह।
0: उस दिन के बाद गणेश जी को देखकर कोई नहीं हंसा, वो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये रस तो बना ही दिया था,

0: तो इसको बिखेरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब भगवान श्री गणेश ने हम जैसे गणों की उत्पत्ति की और अब हमारी रचना करके हमको आदेश दिया कि जाओ और इस संसार में मेरे बनाए हुए हास्यरस को बिखेर दो।
1: वाह,
0: तो उनके आदेश से मैं मंच पे आपके सामने खड़ा हूं और अब मैं यहां से उनके हास्यरस को बिखेरूंगा।
1: क्या बात है।
0: तो ये बात जब मैंने वहां कही तो बड़े खुश हो गए वो दादी माँ, और बोली ये लड़का जो है ये जो कॉमेडी सुनाता है इसको सुनाने देना।
1: वाह वाह वाह वाह, मतलब प्रॉपर मंच की गरिमा का
0: जी
1: आपने पालन किया।
0: जी बिल्कुल
1: उदय जी, इतनी सुंदर बात आपने कही कि कॉमेडी के मंच पर गरिमा कायम रखनी कितनी जरूरी है। ब्रह्म कुमारी जब आप गए और वहां परफॉर्म किया, आज जो कॉमेडी मंचों की हालत है और दोनों तरह की कॉमेडी हो रही है, एक वो जो बहुत शालीन है और एक वो जिसमें शालीनता के तत्व कम है, तो क्या राय है आपकी?
0: देखिए, हर दौर में एक दर्शक वर्ग रहा है। अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, अच्छे सीरियल पहले भी थे, बुरी कहानियां, बुरे सीरियल, बुरे दृश्य एडल्ट फिल्में पहले भी थी। सब जगह एक दर्शक वर्ग होता है। इनका भी एक दर्शक वर्ग है, वो इनको सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा कभी चलता नहीं है। एक जमाना था जब बड़ी खराब सी किताबें पढ़ने की रेलवे स्टेशनों के आसपास खूब बिकती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं ये कुछ समय के लिए होती हैं, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जहन से बाहर भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन जो अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छा सामाजिक चीजें होती हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, चलती रहती है। अब नायकर साहब को देखिए ना, हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं, वो पिछले 60-65 सालों से मंचों पे हैं और आज भी हैं वो।
1: बिल्कुल,
0: आज वो 80 प्लस की एज में है
1: जी,
0: और अभी भी वो मंचों पर दो दो ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे परफॉर्म कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जो आज के नए कॉमेडियन जिस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं उनको कॉमेडियन नहीं मानता हूं। और उनका एक दर्शक वर्ग है, वो कभी किसी के घर के शादी विवाह के कार्यक्रम में, किसी सामाजिक संस्था में जहां बहुत भीड़ हो, वहां परफॉर्म नहीं कर पाते। वो ऐसे 25-50-20 लोग बैठ गए सामने और उनको किस्सा गोई जैसा सुनाते हैं, तो वो अलग तरह का है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें एक पक्ष जो है बहुत बड़ा, वो अभिनय की दुनिया का है
0: जी।
1: ये कहां से शुरुआत होती है और इसमें कितना एंजॉय किया है आपने अभिनय की अपनी यात्रा में?
0: इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, और अभिनय करना तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना तो सुविधाएं थी, ना साधन थे, ना तो घर से इतने संपन्न थे कि घर से पैसे लेकर आ जाएं, ना मुंबई शहर में कोई रिश्तेदार था जिसकी सहारा हो कि इनके पास चले जाएं। तो हमारे लिए सपना ही था, लेकिन कहते हैं कि सपना अगर अच्छे से देखो तो वो भी पूरा हो जाता है। और जो एक 15-16 साल की उम्र का सपना होता है ना, वो पूरा जरूर होता है।
1: क्या बात है।
0: वो जो उम्र होती है 10वीं 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय सपने में ज्यादातर हमें अपने क्लास की कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उम्र ऐसी होती है, ज्यादातर लड़कों को यही होता है, वो फिलॉसफी है, उम्र ऐसी होती है। मुझे उस समय सपने में दिखाई देता था कि एक मंच है और सामने सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, मैं मुंबई में खड़ा हूं और मैं प्रोग्राम कर रहा हूं।
1: वाह वाह वाह।
0: ये सपना मैं 15-16 साल की उम्र में देखता था
1: और वो पूरा हुआ।
0: इसलिए वो पूरा हुआ कि उस उम्र में जो सपना देखा जाता है वो पूरा होता है। मेरे साथ के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड का सपना देखा तो उसके साथ शादी करके अपने शहर में रह रहे हैं, उनका सपना ही पूरा हुआ है। मेरा अपना पूरा हुआ है।
1: जी जी
0: जी, सबका अपना अपना प्यार था, मेरा प्यार मंच था तो मुझे मंच मिल गया।
1: बिल्कुल। और बाद में एक्टिंग की दुनिया में चले आए और आपकी अपनी एक अलग पहचान एक्टिंग को लेकर बनी।
0: जी, मैंने कुछ सीरियल किए, मैंने लापतागंज किया है।
1: लापतागंज तो जैसे आपके साथ जुड़ गया है।
0: जी जी, लापतागंज किया मैंने, उसमें एक कॉमन मैन का कैरेक्टर किया जिसमें एक ही एपिसोड में मैंने 5 तरह के कैरेक्टर किए, अलग अलग तरह के। फिर मैंने दूरदर्शन पे एक राशि विला सीरियल आता है वो किया, उसमें मैं लीड कैरेक्टर में था। उसमें उपासना सिंह हमारी बहन बनी थी, राजू खैर हमारे पिताजी बने थे, हेमंत पांडे हमारे बड़े भाई बने थे। ऐसे अलग अलग और भी बहुत से सीरियल किए, कुछ फिल्में की मैंने। एक मैंने ऐसी फिल्म की है जिसका नाम है कड़के कमाल के।
1: वाह वाह वाह।
0: और ये फिल्म है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगह की फिल्मों के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म की है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो हीरो हीरोइन नेपाल के हैं, आर्यन अधिकारी, नीता धुमाना, ये वहां के बड़े स्टार हैं नेपाल के।
1: जी जी।
0: और कुछ एक्टर वहां के थे और कुछ हमारे यहाँ के। तो उसमें राजपाल यादव हैं, दयाशंकर पांडे हैं, मैं हूँ, मुश्ताक खान है, ऐसे अच्छे कलाकार हैं उसमें काफी। तो वो फिल्म मैंने की है। कुछ और भी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म मैंने की है लव की अरेंज मैरिज। ये विनोद भानुशाली प्रोडक्शन की फिल्म है
1: जी।
0: और इसमें मैं राजपाल यादव, और अन्नू कपूर जी का दोस्त बना हूं।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ऐसी कुछ फिल्में की हैं मैंने।
1: कितना डिफरेंट है मंच पर।

0: परफॉर्म करना और एक्टिंग करना?
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है, क्योंकि सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि मंच पे हम करते हैं एकल अभिनय, उसमें हमें किसी का आपको क्लू नहीं चाहिए होता है, खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले का डायलॉग कम खत्म हो रहा है, उसका डायलॉग किस रेंज पे था, उसने किस टोन में बोला है, वो किस सुर में था, उसके सुर से अपने सुर को मिलाना होता है। वो अगर गुस्से में है, किस भाव में है, तो हमको भी उसी हिसाब से बात करना है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अभिनय बहुत डिफरेंट चीज है।
0: बिल्कुल, तो अभी अभिनय और कॉमेडी दोनों तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। इतनी देर से हम बात करें, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करें आप हमारे लिए।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी जो बच्चों को लेकर कुछ सुनाता हूं,
0: तो
1: उसके ऊपर से मैं सुनाता हूं कि आज के बच्चे क्या तेज दिमाग के बच्चे हैं। हम लोग तो कैसे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई कुछ बात करता था, घर में कोई आ जाए तो मेहमान के सामने बोलने में थोड़ा सा संकोच करते थे, डरते थे, बोलने से पहले सोचते थे कि हमारे बोलने के बाद हमारे पापा जी का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज के बच्चे एकदम बिंदास हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे से बात कर रहा था, तो उससे पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, जब ये कॉर्न तवे पर फूटकर पॉपकॉर्न बनता है गरम तवे पर, तो ये उछलता क्यों है? तो बोलता अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। तो आज के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं, ऐसी बातें हैं उनकी कि जो उनका जवाब होता है वो हमारी समझ से बाहर होता है।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो पूरा परिदृश्य जहां अब चारों तरफ कॉमेडी है, लोग पॉडकास्ट में भी कॉमेडी कर रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, टेलीविजन पर कंटेंट है, ओटीटी पर कंटेंट है, तो क्या एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं?
1: हाँ, बढ़ तो गई है। एक सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पहले अगर एक आधा घंटे का कंटेंट किसी के पास होता था तो बरसों बरस उसको सुनाते रहता था। एक शहर में सुनाया, कल जाके दूसरे शहर में वही सुना दिया, परसों तीसरे शहर में। आज हमारे साथ ये कि यहां हम कुछ सुनाते हैं और वो वीडियो बन जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं सब जगह। तो जब हम अगले शहर में पहुंचते हैं तो उनके पास हमारा कंटेंट पहले से पहुंचा हुआ होता है। तो वहां जाके हमें कुछ नया सुनाना होता है,
0: हर बार कुछ
1: तो
0: नया,
1: हमेशा कुछ नया करते रहना।
0: पर पुरानी चीजों की जो लोकप्रिय हो चुकी है उनकी फरमाइशें भी आती हैं।
1: हाँ, फरमाइश तो आती है, ये है, ये भी एक फायदा है कि लोगों का एक मनोविज्ञान है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे पहले सुना हुआ है।
0: आपके लिए किस तरह की फरमाइशें आती
1: हैं? मैं अगर मध्य प्रदेश में हूं तो वहां की बुंदेली भाषा के लोग चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सुना दूं, और अगर मैं यहां हूं तो मेरा अपना जो स्टाइल है लोग चाहते हैं कि वो सुनाएं।
0: तो हम भी चाहते हैं आप बुंदेली में सुना दें।
1: हाँ, क्योंकि हमारा ये रेडियो तो पूरे बुंदेलखंड, पूरी दुनिया में जाता है, तो बुंदेलखंड के लोग भी सुनते हैं इसको। तो बुंदेली में वहां के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो जब बात करते हैं तो बड़ा तेज दिमाग होता है और कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो वहां के लोग ही समझ पाते हैं, भाषा का है वो। जैसे एक इंटरव्यू था और एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करे। अब एक आदमी गया, बोले मे आई कम इन सर? अरे बोले तुम अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या करोगे, जाओ यहां से। तो दूसरा गया, उसने हिंदी में बोला, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बोले आप तो उनसे भी ज्यादा बात कर रहे हो, यहां उस आदमी की जरूरत है जो कम बात करे। अब ये हमारे यहां का था, बुंदेलखंड का, उसने दोनों को बुलाया, बोले क्या पूछा? अरे बोले मैंने अंग्रेजी में बोला, मुझे अंदर नहीं आने दिया। बोले मैंने हिंदी में बोला शुद्ध, मुझे भी नहीं आने दिया। अब बोले देखो मैं जा रहा हूं। ये गए, इन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा, सर अंदर किया और बोले काय आए।
0: बोले आ जाओ, दो ही शब्दों में निपटा दिया,
1: दो शब्दों में निपटा दिया। तो बोले आ जाओ, तुम्हारी जरूरत थी।
0: क्या बात है,
1: तो
0: क्या
1: ऐसे
0: बात है?
1: लोकल की भाषा के
0: बुंदेलखंड की स्पिरिट को आपने बिल्कुल पकड़ा।
1: जी जी जी,
0: है ना। और कुछ बुंदेली में?
1: अब बुंदेली का मेरा एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो वहां पर लोग बहुत सुनते हैं और बहुत वायरल है।
0: जी,
1: थोड़ा सा दो ढाई मिनट का है वो,
0: जरूर।
1: तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं और नर्मदा जी जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मतलब नर्मदा जी के कारण मध्य प्रदेश पल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उन्हीं का जो जल आता है उसी से सब खेती सिंचाई सब होती है। तो बड़ी श्रद्धा का विषय है हमारे यहाँ, और लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं। और जब वो स्नान करने जाते हैं तो हर बड़े शहर से नर्मदा जी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव गांव से निकली हैं वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, नहाने स्नान करने, तो ज्यादा आवागमन के साधन नहीं है। एक सरकारी बस चलती थी, उसके बाद एक तीन पहिए का टेम्पो चलता जिसमें 15-20 लोगों को वो
0: हाँ बिल्कुल

0: बिल्कुल।
1: तो करिया के दद्दा यानी करिया के पिताजी और करिया की बाई यानी करिया की माँ। अब दोनों की बात चल रही है, कल नर्मदा जी नहाने जाना है, तैयारी शुरू हुई है। करिया के पिताजी यानी करिया के दद्दा ने बोलना शुरू किया, अरे करिया की बाई उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो, भुनसारे अपन नर्मदा सपड़ वे चल
0: भुनसारे
1: और सकारू जल्दी उठ जाइयो, लेट हो गए और बस निकल गई तो समस्या हो जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले।
0: हो
1: अब सुबह पहुंचे तो इत्तेफाक से बस निकल गई,
0: निकल गई।
1: तो अब करिया की बाई ने पूछा कि अब का हुई है,
0: बस तो गई,
1: अब का हुई है, बस तो गई। तो अब इनकी बात चल रही है, करिया के दद्दा बोले कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चलिया। अब वो आगे कैसे गए वो पूरा किस्सा लौट के आके वो महिला अपनी एक पड़ोस की महिला को बता रही कि क्या हुआ।
0: ठीक है,
1: बोले कल का भाव आई जी करिया के दद्दा कहन लगे कि चल तेरे का नर्मद सपड़ भी धल ना। तो भाई भंसारे हम उठे बनिंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धरी और सकारू सकारू उठ के बास्केट हाथ में लेके बस स्टैंड तन चले गए। वहां जान के देखे भाई तो बस निकल गई थी। तो मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है। तो भाई जी करिया के दद्दा मुहे आगे ले गए भाई वे भाई के सो टीन को डब्बा सो ठाड़ो बा को आंगे से सुंगरिया जी सोमो। तो मैंने कही काय करिए दद्दा जो का जल थे। तो वो कहने लगे जा को ना टेम्पू है,
0: टेम्पू
1: तो अपन जई से चल है आज। तो भाई जी करिए के दद्दा तो उमदा ड्राइवर के बगल में आगे बैठ गए और मेरे का जो पीछे पटिया में बिठार दई।
0: हो
1: अब मैं वहां बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम। तो भाई ये इतो बड़ो करिया से मोड़ा आओ माने बा को ढकना ऊंचो कर दो। और मैं वहां में बैठी बैठी सोच रही कि अब भगवान जान का हुई है। तो भाई बाने एक कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो। तो मैंने कहा ये उमीर राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैं सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम है। तो भाई बा करिया मोड़ा ने एक रस्सी निकारी और बाकी बोनट में ऐसी लपेट दई। ओबर रस्सी लपेट के जीवन बाकी रस्सी पकड़ के एक पांव बाकी टायर पे धरो। ओबर ड्राइवर से कहने लगो हूं। तो भाई ड्राइवर ने भी कह दी हूं। और जैसे ही ड्राइवर ने हूं कही जीदवाने जोर से खींच के तान दो तो फटफटा के चालू होगा। अब वो ऐसो डगमगा रहो। तो मैंने कही काय भैया अब भगवान जाने जा मक्का हुई है। तो जीजी बा ड्राइवर के बगल में एक टीढ़ो सो हैंडल लगो थो बाने बाय पकड़ के भीतरे करो फिर बाहर करो फिर भीतरे करो। मैंने कही जो का जल थे। तो बगल वाली बाई कहन लगी जो गेयर है जैसे चला थे। अब बाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक रपटा पे धीरे धीरे ऐसो चढ़ रहो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो ऐसो चढ़ा चढ़ा ऐसो न हो जाए
0: पलट तो नहीं जाएगा।
1: तो मैंने कही तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहने लगो रोकत नहीं हूं, रोक हूं तो पीछे लुढ़क जाए। तो मैंने कही फिर लगे जान दे और आगे जान के जीजी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।
0: अरे दद्दा रे
1: फिर काय की नरब दजी जी भाई डबराम सपड़ के लौटे आए।
0: क्या शुद्ध बुंदेली मजा आ गयो। क्या शानदार बुंदेली रचना आपने सुनाई, सच में मजा आ गयो। ये जो बुंदेली लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस भाषा की जो मिठास है
1: जी जी जी
0: है ना, बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड है,
1: सच्ची बात।
0: तो जो प्रांतीयता कॉमेडी में आप लेके आते हैं वो कितना काम करती है मंच पर?
1: बहुत काम आती है ये भाषा जो है। पता नहीं क्यों भाषा को लेकर बहुत विवाद देखने को मिलता है, लेकिन मैं समझता हूं भाषा कभी विवाद का विषय होती ही नहीं है। भाषा सिर्फ संवाद का विषय होती है। हम आपस में बात करते हैं, आप अपनी संवेदनाएं अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं शब्दों के माध्यम से, वो भाषा है। भाषा के लिए क्या लड़ना। मैं तो सोचता हूं कि सारी भाषाएं सीखना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: सारी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन हमारा देश इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं, संभव नहीं है कि कोई सारी भाषाएं सीख पाए। और जब भाषा नहीं आती और जबरन बोली जाए या जबरदस्ती बुलवाई जाए या नहीं आ रही तो भी बोली जाए तो फिर आदमी हास्यास्पद हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: हाँ, भाषा नहीं आती बड़ी समस्या होती है। मैं तो नया नया मुंबई में आया था, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तब। मैं एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो बोली लव कर, मैं उसके चक्कर में चार स्टेशन आगे चला।
0: लव कर बोल रही थी,
1: मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बोल क्या रही है। भाषा आना बहुत जरूरी, सीखना पड़ता है। मैं लोखंड वाला में रहता था।

0: 2005 की बात है, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। लोगों के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, इतने लोग डूब गए। 4 महीने बाद मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे, होर्डिंग वहां पर, उस पर लिखा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा, बाढ़ दिवस का शुभेच्छा। मैं परेशान कि यार 4 महीने पहले लोग डूब के मर गए, ये कौन है जो बाढ़ दिवस की शुभेच्छा दे रहा है। फिर किसी ने बताया जन्मदिन को बाढ़ दिवस बोलते हैं। तो मैंने कहा यहां रह के सारी भाषा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि भाषा आना बहुत जरूरी। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला।
1: अच्छा,
0: मेरी जो पत्नी है वो मराठी है।
1: अच्छा, तो आपने ये
0: तो अब मैंने शादी की, तो अब वो मराठी है, उनको सारी मराठी आती
1: है। उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी करती
0: है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूं, कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूं। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं, वह घर पे जाके पूछता हूं ऐसा बोला था, ये मेरे लिए ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूं।
1: ऐसा है
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या, तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो, मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है, हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है,
1: हाँ,
0: दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें,
1: हाँ,
0: और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो आपकी सीखे,
1: बिल्कुल
0: उसमें फायदा ये होता है जब लड़ाई होती है तो वो अपनी भाषा में गाली दे, अपन अपनी में, तो ना उसको समझ में आए ना अपने को समझ में आए,
1: तो वो मराठी में शुरू हो जाती है।
0: हाँ, ऐसा होता नहीं है।
1: उनके सामने आपको कितना बोलने को मिलता है, क्योंकि आप मंचों पर इतना सब परफॉर्म करते हैं, पर घर पर आप परफॉर्मर हैं या लिसनर हैं?
0: एक्चुअली एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, अ गुड लिसनर बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही आगे चल के बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। तो मैं मंच के ऊपर बोलता हूँ
1: और घर में
0: बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ। बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कितना अच्छा वक्ता मुझे मिल जाए और मैं उसको घंटों बैठ के सुन लूं। मैं आज भी बहुत अच्छा लिसनर हूं।
1: आपने अपनी पत्नी पर कोई कॉमेडी बनाई है?
0: बिल्कुल बनाई है,
1: सुनाई।
0: देखिए मैं,
1: लेकिन याद रहे कि घर पे खाना मिले आपको?
0: हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे देख ही रहे हैं मेरा रंग रूप कैसा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन मेरी पत्नी एकदम गोरी है। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे कर ली, अब आप सोचेंगे कि चलो उनका तो वहां जाके माइंड डाइवर्ट हो गया, उनके पिताजी को सोचना चाहिए था कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। तो यहां भी मेरी लॉटरी लगी। मेरे जो ससुर हैं वो कोल माइंस में नौकरी करते हैं।
1: लो,
0: तो दिन भर वो कोयले की खदान में रहते हैं अंदर, उसी को देखते, जब उनने मुझे देखा तो बोले उससे तो यही ठीक है। तो ऐसे मैं अपने पर्सनल लाइफ पे भी कॉमेडी बनाते रहता हूं।
1: क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा, कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं ये सब टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज, कॉमेडी शोज देख करके वो भी एक दिन नाम कमाएं। आप संघर्ष के उसी रास्ते से आते हैं कि एक छोटे से शहर से मुंबई शहर तक का सफर आपने तय किया है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप कि ये रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल है और कितना धीरज रखना पड़ता है?
0: देखिए मैं एक बात मानता हूं कि हमारी जो फील्ड है कलाकारों की, इसमें मुंबई आने के बाद आपका कला जो है वो 10-20% चलता है और 80-90% भाग्य चलता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप मुंबई नहीं भी आएंगे तो उदय दाहिया की तरह आपको गांव से बुला लिया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं मुंबई नहीं आया था,
1: यस,
0: यहां आकर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, मुझे तो मुंबई से लोग जाके गांव से उठाकर लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो उसका एक ही कारण है कि मैं जो काम कर रहा था उसको इतनी ईमानदारी से कर रहा था, और मैं कभी सोचते ही नहीं था कि यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, ये तो मुझे लोग खींच रहे हैं मेरे पास आओ यहां आओ। तो बस काम अच्छे से करते रहो, आपसे आपके आसपास के लोग कहने लगे कि भाई तुम यहां के लिए नहीं बने हो, तुम कहीं और जाओ। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर अपना शहर मत छोड़िए। एकदम से किसी बड़े शहर में मत पहुंच जाइए।
1: हाँ।
0: जैसे छत पर चढ़ने के लिए 15-20 सीढ़ियां होती हैं और आप एक एक के चढ़ के फिर आप ऊपर पहुंचते हैं, यही यहां पर लागू होता है। आप पहले अपने शहर में करिए, अपने स्कूल में करिए, घर में करिए, मोहल्ले में करिए, शहर में करिए, आसपास के शहरों में करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे सब पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रास्ते खुलते जाएंगे और लोग खुद आपको बुलाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत सही सलाह आपने दी है। और इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली, आपने किशोर कुमार का नाम भी लिया कि 87 में उनसे आपको प्रेरणा मिली थी, लेकिन किसी गाने का जिक्र अभी तक नहीं हुआ। तो अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।

0: वैसे तो किशोर कुमार जी के इतने सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है, और उनमें से कोई एक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक गाना है जो डुएट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, वो है फिल्म डॉन का। क्योंकि इस गाने में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अपील कर रहा हूं, जिसका मुझे था इंतजार
1: वो घड़ी आ गई।
0: वाह, तो मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं वो वाला गाना बजाया जाए।

0: उदय जी बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और आगे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने के लिए।
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और समृद्धि नायक। संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया।

तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी के सदाबहार निर्माता निर्देशक हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है गाइड।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: काला बाजार। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, धुन है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है तेरी घर के सामने।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

0: जाने कहाँ हो के बहार,
1: जाने कहाँ हो के बहार।
2: साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तीन देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

संगीत के इस सुरीले सफर में बन के हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता देंगे हम आज की इबारत क्या है। साथियों, देखते ही तुझे कह उठा दिल, मिल गई है मुझे मेरी मंजिल। तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, बोलो कैसे रह पाओगे। हसीन झरनों के साई में अकेला छोड़ जाते हो, न जाओ, तुम्हारे बिना बहारों में खुशी क्या है। ठहरो, मैं दिल को संभालू जरा, अभी तो आए हो, अब जाते हो क्यों? क्या मेरी चाहत पे तुमको नहीं भरोसा? जाके फिर आओगे, आके फिर जाओगे, छोड़ो ये आना जाना कि बीच राह में बिछड़ जाएं कहीं हम, अगर तो आओ पास बैठें के कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं और कैसे बीती वो रात सुहानी। तू सुन ले ये कहानी सारे जहान से,

तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर हमें बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं, मतलब हम तक भेज चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं। तो इन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम पढ़ देते हैं आपके कुछ संदेश। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुकम्मल मोहब्बत में खोए महबूब और महबूबा की दीवानगी, मदहोशी का माकूल चित्रण, मोहब्बत के मारों की रुमानी दास्ता, जहां किसी गैर की जरूरत नहीं होती, उनकी मंजिल है मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत प्यार में मिलन की दास्तान और साथ बिताने वाले सुनहरे पल को लेकर आई है, जो मोहब्बत में अपने भरोसे को कायम रखता है। नजरों से नजरों का मिलना कुछ इस तरह हुआ, हर नजारा एक हंसी ख्वाब जैसा हुआ, जब हम मिले तो सज गया समा, प्यासे दिल की जमी को मिला आसमां। अगला कमेंट है कि आज की सुंदर इबारत प्रेम की उस कहानी को सुर देती है, जिसमें मिलन की खुशी, बिछड़ने की कसक और साथ बिताए पलों की सुहानी यादें एक साथ धड़कती हैं। उसमें कहीं भरोसे की मिठास है, कहीं जुदाई का डर, तो कहीं फिर लौट आने की उम्मीद। अगला एक साथी ने अगला मैसेज लिखा है कि दो दिलों की दास्ता है इस कहानी में, मिलने की खुशी है, बिछड़ने का गम है और वो हमेशा साथ रहे। आज के गीत आने की आशा और बिछड़ने के दर्द से भरे हैं और अपने प्रियतम को पास रोक लेने की कोशिश करते नजर आते हैं। आज की इबारत में मिलन की खुशी भी है और जुदाई का गम भी, तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, और जब मिले तब देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं, अच्छा तो हम चलते हैं, चले जाना जरा ठहरो। मोहब्बत में कभी मंजिल मिलती है तो कभी जुदाई का डर सताता है, उसके बिना बहारों की खुशी भी अधूरी लगती है और दिल चाहता है कि वो कुछ पल और ठहर जाए। चाहत और भरोसे के सहारे प्यार के तूफानों को पार करते हुए मन कभी साहिल की तलाश करता है। आना जाना और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है, मगर साथ बिताए पल हमेशा दिल में रहते हैं। पास बैठकर बीती रातों की कहानी सुनते सुनते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता।

साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, इन कलाकारों के नाम लिख दीजिए और इस अभिनेता का देव आनंद के साथ क्या रिश्ता है वो भी हमें बता दें। इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की, संगीत है बप्पी लहरी का, गीतकार है अमित खन्ना और फिल्म का नाम है चलते चलते, और साथ ही अपने विचार, अपने जवाब हमें लिख दीजिए।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे वो हमें मिल गए। विशाल आनंद अभिनेता, निर्माता, निर्देशक देव आनंद के भतीजे हैं और विशाल आनंद ने इस फिल्म में अभिनय किया था। और साथियों, जो मैसेज मिला ये है कि इस फिल्म की खास बात यह है कि इसी फिल्म से मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी को बड़ा ब्रेक मिला था। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे रवि गुप्ता और आशा, यानी कि विशाल आनंद, सिमी ग्रेवाल, नाजनीन और डॉक्टर श्रीराम लागू। साथियों, बिछड़ के फिर मिलेंगे यकीन कितना है, महज ख्याल है मगर हसीन कितना है। जिंदगी का सफर मुलाकातों और जुदाई का एक ऐसा सिलसिला है, हर मिलन के बाद बिछड़ना पड़ता है, लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद का दिया जलता रहता है कि हम बिछड़कर फिर मिलेंगे। ये एक ऐसा एहसास है जो उम्मीद और रिश्तों की गहराई को बयां करता है। मिलन की आस बिछड़ने के दर्द को कम करके दिल में नई आशाएं जगाती है। वक्त के साथ दूरियां कम होती जाती हैं और दोबारा मिलने के रास्ते बनते हैं। सच्चे रिश्ते फासलों से कम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। बिछड़ना अंत नहीं बल्कि एक नए और खूबसूरत मिलन की शुरुआत का इंतजार है। साथियों, जब कोई आपसे मिलकर या मुलाकात के बाद जाने लगता है तो आप उन्हें कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, बताएं हमें भी। और किताबी भाषा की जगह थोड़े आसान भाषा में अपने जवाब लिखें। दोस्तों, स्कूल कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले मिलकर बिछड़ जाते हैं और उनमें से कुछ लोग दोबारा मिल भी जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि अचानक ऐसे लोग सामने आ खड़े हुए या किसी डगर पे दोबारा मुलाकात हो गई तो आपको कैसा लगा? उस खुशी को हमारे साथ बांटिए और साथ में ये भी बताइए कि मुलाकात के बाद, यानी कि टाटा, बाय बाय, सायोनारा जैसे कौन से गीत आपके जहन में और मन में इस वक्त आ रहे हैं, हमें वो भी बताएं। और अब बात होगी 1970 में आई फिल्म आन मिलो सजना की, एक मशहूर बॉलीवुड संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी प्यार, धोखे और रिश्तों के उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। कई नाटकीय मोड़ आते हैं जहां अजीत और वर्षा के प्यार की परीक्षा होती है और अंत में सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अजीत, वर्षा, अनिल और सावित्री की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। तब तक आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढले।

मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे ठहरो अभी तो कुछ पल और साथ रहो। एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नजर आया तो दिल ने कहा, भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूं यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां, तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि जहां एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंच जाता है लेकिन वहां उसके साथ उसका वो खास शख्स नहीं होता तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा, तो ठीक है सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फार्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो जरूर जुड़ूंगी, तो ठीक है कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नजरों ने जब से तुम्हें पाया है इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है, तुम दूर जाने की बात करते हो जरा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी जिंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियां, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी खत्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, और आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर

0: पर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नजीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा, और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश। अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स। आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है। एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है। अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है। अगला मैसेज है कि जहां एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहां मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ साथ चलते हैं। प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई बहुत खास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हसीन पल एक ऐसी अनमोल पूंजी बन जाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भी याद करके मुस्कुरा उठता है। एक साथी ने लिखा है, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो हमारी तरफ से आपको भी। अगला एक मैसेज है कि आज तो सिर्फ सुनने का मन है, कोई कमेंट नहीं। हमें ये गाना याद आ रहा है, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर हिस्सा मिलना नहीं बल्कि बिछड़ने के बाद भी किसी का दिल में बने रहना होता है। कुछ लोग जिंदगी में पल भर के लिए आते हैं मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आजा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूं, परिवार के संग हूं। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

साथियों, अमेरिकी साहित्य के एक मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है राजा और रंक। एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार

रंग। आवाज की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, दो दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शम्सुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वीराज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफर के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नजारों की यात्रा को

दिखाया गया है। आखिर में सब साजिशें बेनकाब होती हैं और कहानी का सुखांत तो होता है। साथियों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में राज कपूर की नायिका कौन थी, जिनके माता पिता भी महान कलाकार हैं, और साथ में इस फिल्म के खलनायक का भी नाम लिख दे। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं, इसमें किसकी आवाजें हैं वो भी हमें बताएं, और साथ में इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लिख दें।

साथियों आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माताजी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफर के बन के हम सफर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जरा नजरों से कह।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के

0: पीछे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ, ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
1: हलीमा।
0: हलीमा, चल बाहर निकल। ला हौला वाला।
1: नहीं
0: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
1: अहला, मेरी टांग छोड़िए।
0: तू बाहर निकल।
1: नहीं, आप मारेंगे।
0: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
1: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ू छोटे सरकार, मैं मर गई। अल्लाह।
0: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबके? क्या कर रही थी?
1: कुछ नहीं सरकार।
0: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
1: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
0: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
1: जी।
0: झूठी,
1: अल्लाह कसम।
0: क्यों भेजा था?
1: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
0: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
1: सरकार कसम से, बुबू ने।
0: झूठी।
1: सरकार आप सरकार।
0: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नायाब बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
1: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
0: हमारे पैरों में क्या हो गया?
1: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
0: हमारे पैरों में दर्द नहीं
1: सरकार।
0: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं? निकल हमारे कमरे से
1: सरकार।
0: अब जाती है कि
1: मुझे ना निकालिए सरकार।
0: क्या बक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
1: मेरी अच्छे सरकार।
0: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
1: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
0: ओहो, कैसी बातें कर रही है हलीमा।
1: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
0: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा, तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे। पहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
1: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था। बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
0: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी। किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
1: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
0: कैसर नवाब?
1: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रही हूँ।
0: मगर ये नहीं हो सकता।
1: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
0: नहीं, ये हरगिज नहीं होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
1: उनके हुक्म से तो नया बूबू ने मुझे भेजा है।
0: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
1: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
0: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
1: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बूबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
0: सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत।
1: हाँ सरकार, बूबू मुझसे खफा नहीं, क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
0: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
1: नया बूबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
0: नहीं नहीं हलीमा, छोड़ो
1: मेरे नवाब।
0: हलीमा जाओ, हलीमा ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
1: छोटे सरकार,
0: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
1: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब उर्फ छमनिया, अरे भाई क्या हाल चाल है?
0: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अमा यार, क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
0: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है। कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अमा अमा, ये क्या किस्सा है?
0: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।

0: मैं इसे बदकारी समझता
1: हूँ। ओह, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
0: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
1: अमा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
0: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
1: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुँचा दिए जाओगे।
0: ये घर कुछ पागलखाने से कम है? जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे।
1: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ। वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
0: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है। इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
1: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
0: आप तशरीफ ले जाइए।
1: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
0: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
1: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छम्मन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं। बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
0: औलादे नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
1: मगर बांदी से क्यों भी देखते हो? शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
0: और बांदी?
1: बांदी काम आएगी।
0: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगी।
1: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म रिवाज को नहीं समझती हैं।
0: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना हो?
1: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
0: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
1: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
0: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा। अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
1: ला हौल वला कुव्वत, मियाँ तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
0: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती हो।
1: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
0: जब्बार, अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
1: तो एक काम करो साहबजादे।
0: क्या?
1: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूँ, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
0: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
2: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
0: हलीमा,
2: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती
0: नहीं
2: है तो...
0: हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई। हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो। इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
2: मेरे अच्छे नवाब।
0: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो। तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा। रहम करो हलीमा।
2: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल ऐसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं। मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
0: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
2: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
0: मुझे बांदियों से घिन आती है तो मैं तुमसे शादी करूँ।
2: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं सिकंदर नवाब ने अपनी निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
0: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
2: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
0: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
2: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया। आपकी बांदी बनना मेरे लिए मेराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
0: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
2: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
0: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
2: मगर हूँ आपकी।
0: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
2: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
0: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
2: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
0: हलीमा, हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा,

0: ऐसी दिखाई देती है।
1: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम?
0: हाँ बेगम, भला इन आँखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चोटले खत्म।
1: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
0: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी के साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
1: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
2: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
3: मेरा जी चाह रहा है।
2: हमें छोड़कर चली जाओगी?
3: जल्दी आ जाऊंगी।
2: कितनी जल्दी?
3: थोड़े दिनों बाद।
2: कितने होते हैं थोड़े दिन?
3: यही कुछ 6-7 महीने।
2: 6-7 महीने?
3: आहिस्ता बोलो।
2: हम मर जाएंगे।
3: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौशा बुरी वालमुसी ने निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खिदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
2: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा जान? ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
3: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोबर की और बात थी। बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
2: बच्चा?
3: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
2: मेरे सर की कसम खा।
3: नहीं अल्लाह नहीं।
2: हलीमा तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
3: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
2: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
3: जी।
2: बच्चा कब तक होगा?
3: 6 महीने बाद।
2: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
3: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
2: तुम गांव नहीं जाओगी।
3: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
2: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
3: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
2: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
3: सरकार।
2: शट अप।
4: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
5: ये लीजिए।
4: ये शह वो मारा।
2: भाईजान मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
5: अम्मा इस वक्त बड़े जोर की बाजी जमी है खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
2: भाईजान
5: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
4: शेह हजमत नवाब शेह।
2: उफ प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
5: उफ कहो क्या कहना चाहते हो।
2: जरा मैं
5: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता?
2: भाईजान
5: अम्मा कह भी चुको।
2: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
4: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
2: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
4: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा, है, है, क्या उठान है। अमा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती?
5: अफजल भाई अच्छा जाने दो, आगे चलो।
2: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा।
5: मियां ये महल का पुराना दस्तूर है।
2: वो गाय भैंस नहीं, वो
4: कहो कहो शर्मा क्यों गए?
2: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
5: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
4: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता। प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
2: भाई जान
4: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
2: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
5: बहुत खूब, वो कब?
2: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
5: और निकाह काजी कौन था?
2: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
4: वल्ला तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
5: जाओ मियां क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई,
4: भाई
5: दूसरी बाजी जमाएं। ला हौले वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
2: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
4: झमन मियां तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
2: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
5: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
2: भाईजान मैं
5: बदतमीज।
4: अरे अरे अरे ये क्या करते हो हशमत मियां? क्या
5: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसे हुई?
4: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
0: बेगम साहिबा एक बात तो हूँ।
1: कह भी चुको क्या कह रही हो।
0: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है।
1: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी। اللہ سلامتی سے فراغت دلائے.
0: فراغت پا کر ولایت جانے کے ارادہ ہے.
1: ہاں ہاں خدا جیتا رکھے میری لاڈلی کو.
0: آمین. تو

0: गोद वाले को विलायत संतुना ले जाएंगी?
1: अब दीवानी हुई हो, वहां मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी। खैर से वो मेरे पास ही रहेगा।
0: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरंगन फिर ही लग जाएगी।
1: अय है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारो पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई?
0: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं। मुंह जली की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं?
1: ए बुआ, तो कुछ मुंह से फूटो तो।
0: नजम बेटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
1: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
0: जो हुकुम सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
1: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी।
0: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ, साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
1: कभी सोचती हूँ नायाब, तुम न होती तो।
0: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
1: जरी खासदान आगे बढ़ा।
0: लीजिए, हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती हैं।
1: अच्छा दिखा लाओ।
0: अभी मतन, तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
2: ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
0: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
2: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
0: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
2: क्या है?
0: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
2: क्यों?
0: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
2: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
0: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
2: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
0: जी जी हाँ।
2: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
0: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक, ये देखिए, ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा, ये हाँ लाकेट।
2: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत है?
0: है। रानी बिटिया क्या फरमा रही हैं आप?
2: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
0: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
2: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना।
0: बच्चा? कैसा बच्चा?
2: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
0: ए बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांधिया इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती है।
2: बोलो बोलो, जब्बार की कसम खाकर कह दो।
1: ए बिटिया, आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं, मगर वो लौंडे बांधी तो जी का बेलावा होती हैं, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
2: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
1: और क्या बिटिया रानी,
2: हशमत भाई की तो एक बांधी थी, क्या नाम था, सनोबर?
0: ये वो रानी बिटिया, ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
2: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बबू?
0: शौक से पूछिए, मगर वो
2: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
0: हाय हाय बिटिया रानी, जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रही हैं?
2: क्यों, अगर छम्मन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
0: अम्मा जान नहीं, इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रही हैं, वो होती तो मजाल न थी जो यूं मेरे मुंह पर जुतियां मारती। बेटी जान, ये गज भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
2: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं, मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
0: बस बीवी बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
2: आय हाय बुब्बू, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
0: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुश्तों को कहा।
3: ओहो नायाब आई है, चली कहाँ, क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
0: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं, खैर से बकरीद की चांद निकाह है, जेवर बंबई से बनकर आएंगे।
3: नायाब बूबू, तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है, समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
0: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम, ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
3: है कैसर नवाब, कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
0: आप बहुत भोली हैं बेगम,

0: मैं आओ बेटे, मैं वही डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
1: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
0: अरे कहाँ जा रहा है चम्मच मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
1: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
0: ना जाओ मेरे लाल,
1: खुदा
0: ना जाओ मेरे लाल चम्मच।
2: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे।
0: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ, ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
3: नहीं बाबू, कैसे हैं चमन मियां के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
4: मेरे कान नखा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
0: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है।
4: बेगम बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
0: घर बार कैसा है?
4: है बेगम कुर्बान जाऊं, ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है। बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी के उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छम्मन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
0: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
5: नाट्य तरंग में अभी आप इसमत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हिमांगिनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
6: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
7: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
6: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
8: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
6: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
9: तुम्हारी याद सताते हैं
6: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो